0: Air India. What? There is a time bomb in flight number 125. Hello? Who is speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello? Hello? क्या बात है? किसी ने फोन से बताया कि फ्लाइट नंबर 125 में टाइम बम लग गया. What?
1: मैं देख सकती हूँ यार.

0: Hello, Air India.
1: Air India.
0: What? There is a time bomb in flight number 125. Hello, who is speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello, hello. क्या बात? किसी ने फोन पे बताया कि flight number 125 में time bomb लग गया. What?
2: That Air India flight 125 will be delayed for some technical reason. Passengers are requested to please collect their baggages and